जो भी है वो जो भी है वो जो भी है। शांति रेडियो, शांति रेडियो, शांति रेडियो, शांति रेडियो, शांति रेडियो, शांति रेडियो।

कार्यक्रम भजन दीपांजलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदीका हरेक प्रकारका सामग्रीका लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेज धर्मपथ।

0: गीता ज्ञान,
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजे देखि 8 बजे सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा।

0: झूले यहाँ सुंदर FM अध्यात्म ज्योति ज्योति।
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति।

सोच र समझदारी को सेतु एफएम अध्यात्म ज्योति सिल्वर पैलेस विश्वसनीय सुरक्षित र भर पर्दो स्वदेशी श्रम र सिप बाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चांदी का एक्सक्लूसिव गहना लगायत भाड़ाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चांदी का सामान को लागि सिल्वर पैलेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान मा 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एकमात्र सिल्वर पैलेस पसल नंबर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं प्युखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा

0: इस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन सुबह लगन लगायत का उत्कृष्ट चावल स्वाद र संतुष्टि को लागि जय श्री फूड्स प्राली का

नमस्कार आदरणीय श्रोता, जय श्री फुड्स प्रालीद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सर्वमङ्गलममा म सभ्यता तिवारी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु।

0: कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जय श्री

0: झीले यहाँ सुंदर FM अध्यात्म ज्योति ज्योति
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति।

0: शांति आराधना र उपहार का लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी।
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभावहरूले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: उसको बुला दो सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दो। उसको बुला दो सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दो।
1: जो भी मेरे पास

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

0: गोल्ड पैलेस, सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू श्रेष्ठ टेलरिंग,
2: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज, मलाई ट्रैक शूट चाहिए,
3: मलाई फ्रॉक,
4: मलाई पनि सूट,
5: वाओ,
6: अनि मलाई

0: ಸಾವೇಲ್ ಚುಚ್ಚೆಪಾಟಿ
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। रस भरी फिल्मी यादों की यात्रा के मुसाफिरों तैयारी कीजिए, मैं यानी आपका रेडियो दोस्त अमीन सायानी आपको ले चलने वाला हूँ समय की उन सात राहों पर जिन पर हम चलते तो हर वॉल्यूम में हैं लेकिन मैंने कभी उनके बारे में आपको बताया नहीं। तो देखिए ये है समय का रास्ता नंबर एक। ये रास्ता है वो साल जिस पर हम उस वॉल्यूम में रोशनी डाल रहे हों, जैसे आज बारी है 1960 के बेमिसाल गीतों के। और इस रास्ते पर आपके लिए छाओ के गीतों के साथ साथ तैयार खड़ी हैं दो टॉप की सालाना संगीत सीढ़ियां, मिनी सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी पर पांच झलके हैं उस साल के दसवें से लेकर छठे गीत तक की झलके। दसवें नंबर पर था तू नहीं और सही का गीत।

और साहब इसके फौरन बाद ये देखिए आ गया समय का रास्ता नंबर 2। इस रास्ते पर गीतों के साथ आती हैं इन गीतों से जुड़ी हुई खास घटनाएं हैं। तो भाई पहले गीत सुनिए, यानी 1960 के गीत नंबर 9 की झलक, और फिर आएगी इसकी एक मजेदार खबर।

कट कट कट भाई, यहाँ भी उस साल चली थी सेंसरों की कैंची। संगीतकार आनंद जी ने मुझे हाल ही में बताया है कि फिल्म सेंसर वालों ने शायद ये सोचा होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सबको कैसे छल सकता है, राज कपूर जैसा महान एक्टर, तो उन्होंने ऑर्डर दिया छलना मेरा काम ये शब्द जो है ये काटो और उनकी जगह कुछ और लगाओ। तो बेचारे कल्याण जी भाई को उस गीत की मरम्मत यूं करनी पड़ी।

अब देखिए, मधुबाला की सच्ची कहानी मैंने आप में बताई थी, याद है ना आपको, मगर एक बात वहां कहनी रह गई थी बहनों भाइयों, और वो ये कि एक तो असली भारी लोहे की जंजीरों ने उनकी सेहत पर हमला किया ही था, मगर मधुबाला इतनी अच्छी और सच्ची एक्ट्रेस थी कि पूरी तरह से कैदी लगने के लिए उन्होंने कई दिनों तक अपना खाना पीना बहुत कम कर दिया था, और इससे भी उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा। बहरहाल दोस्तों, फिल्मी हस्तियों की इस तरह की कहानियां चलती हैं गीतमाला की छाओं में के समय के रास्ते नंबर 3 पर, और अब हम उस साल के पायदान नंबर 7 पर चढ़कर उस जमाने के नए सिंगर महेंद्र कपूर की आवाज में जुबली स्टार राजेंद्र कुमार बनकर भोली भाली प्यारी नंदा से कहेंगे।

ये गीत था फिल्म धूल का फूल का और 1960 की सालाना पायदान नंबर 6 के गीत की फिल्म का नाम, भाई अगर आज मीना कुमारी होती ना तो यूं बताती।

बस बहनों भाइयों, यहाँ पर आकर हम 1960 के टॉप हिट गीतों की पायदाने रोक देते हैं और उस साल की छाओ के गीतों का सिलसिला एक बड़े ही मजेदार, बड़े ही अनोखे गीत से शुरू करते हैं, जिसमें यूं कहिए कि ए बी सी थी, या यूं कहिए कि क ख ग अ ई ऊ थी, भारत की उस जबरदस्त भाषा की जिसमें ढलकर कई चोटी के शायरों ने हमारे फिल्मी संगीत को शब्दों से संवारा। वो भाषा है हिंदी की प्यारी बहनियां, उर्दू। तो बस आप सोचिए कि आप मेरे साथ बन गए हैं बच्चे और हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे हैं।

0: और भाई यही उर्दू भाषा अब हमें इशारा कर रही है कि देखो देखो अब शुरू हो रहा है समय का रास्ता नंबर 4। इस रास्ते पर सजा करती हैं मशहूर फिल्मी हस्तियों की बोलती हुई आवाजें। अच्छा, इस रास्ते पर बहनों भाइयों समय का कोई बंधन नहीं लगता। हम चाहे कहीं से भी कभी से भी फिल्म स्टारों की पुरानी रिकॉर्डिंग्स ले आते हैं आपके लिए। अब देखिए लव इन शिमला जिसका गीत अभी भी आपने सुना, उसकी शानदार हंसमुख चंचल सुंदर मिलनसार बड़ी ही गजब की हीरोइन थी कौन, या साधना। ये भी फिल्म स्टारों की पुरानी रिकॉर्डिंग्स ले आते हैं आपके लिए। अब देखिए लव इन शिमला जिसका गीत अभी भी आपने सुना, उसकी शानदार हंसमुख चंचल सुंदर मिलनसार बड़ी ही गजब की हीरोइन थी कौन, या साधना। और डायरेक्टर थे बड़े ही गुणी डायरेक्टर आर के नैयर। फिल्म 1960 में आई और उसके कुछ अरसे बाद साधना और आर के नैयर की शादी हो गई और उसके कुछ साल बाद साधना ने मुझे अपने पति के बारे में यूं बताया था।
1: उन्होंने तो शुरू से ही मेरी तारीफ के बुल बांधने शुरू कर दिए थे, जैसे मुझसे अच्छी कोई और एक्ट्रेस हो ही नहीं।
2: तो क्या गलत कहा था नैयर साहब ने? अच्छा फिर क्या हुआ?
1: लव इन शिमला के बाद कुछ अरसे तो हम लोग बिल्कुल अलग रहे।
2: अच्छा,
1: झगड़ा हो गया था।
2: ओहो।
1: और फिर जो मिले तो शादी के अटूट बंधन में बंध गए।
2: हाँ भाई, होना भी ऐसा ही चाहिए था। अच्छा कुछ नैयर साहब की पर्सनैलिटी के बारे में बताइए साधना जी, किस टाइप के आदमी है वो?
1: बड़े मस्त मनमौजी टाइप के आदमी है, बड़े ठाट बाट से रहते हैं। वो अच्छी से अच्छी जगह रह चुके हैं, कीमती से कीमती गाड़ी चला चुके हैं, मगर पैसे की उन्हें बिल्कुल कदर नहीं।
2: अच्छा,
1: हजारों हो या लाखों या कुछ भी ना हो, उनके लिए सब बराबर है। वैसे वो अपने आप पर कुछ खर्च नहीं करते, पैसे से ज्यादा उनकी नजर में इंसान की कीमत है।
0: आर के नैयर अब इस दुनिया में नहीं रहे और गीतमाला की छाव में का ये वॉल्यूम नंबर 15 रिकॉर्ड हो रहा है कब? सन 2010 में, जब साधना हैं तो, मगर कई वर्षों से नजर नहीं आई वो। आंखों की बीमारी ने उस

0: लाजवाब अदाकारा को गुमनामी की छांव में डाल दिया, मगर मैं उनका दोस्त और उनका जबरदस्त फैन, पहले उन्हें सलाम और हेलो कहता हूं, हेलो साधना, और फिर बहनों भाइयों मैं गीतवाला की छांव में यूं बढ़ता हूं आगे। एक ऐसा बड़ा प्यारा गीत आया था उस साल जिसमें मोहम्मद रफी के साथ साथ गीता दत्त ने गाया तो था ही, मगर उन्होंने कुछ लव्स बोले भी थे, याद है आपको वो गाना?
1: चुपके से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम, क्या हो जो घटा खुल के बरसे रुम झुम रुम झुम।

0: कुछ।
1: तो बहनों और भाइयों, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा उस रास्ते पर जिस पर मेरी कहानियां सजी हुई होती हैं, यानी समय का रास्ता नंबर 5। ये तो आप जानते ही हैं बहनों और भाइयों कि बच्चा जब पैदा होता है ना, तो खुशी की कितनी लहरें दौड़ पड़ती हैं पूरे परिवार में। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं भी खुशी से फूला नहीं समाया, मगर मुझे सिर्फ सुबह और फिर बड़ी देर में रात को अपने बेटे राजिल को देखने का मौका मिलता था, क्योंकि भाई दिन भर मैं दफ्तर में रेडियो सिलोन के प्रोग्रामों में लगा रहता था, न सिर्फ गीतमाला बल्कि कई और प्रोग्राम और फिल्मों की रेडियो पब्लिसिटी भी। और जब रात को मैं घर लौटता ना, तो मेरा बेटा अगर कभी जाग भी जाता तब भी मैं उसे अपनी बाहों में उठाता नहीं था, क्योंकि बहुत डरता था मैं कि अरे इतना छोटा सा बच्चा है, मैंने उसे ठीक से नहीं उठाया, ठीक से नहीं पकड़ा, तो कहीं उसकी गर्दन या उसकी कमर न लचक जाए। उसे तो सिर्फ रमा उठाती थी या मेरी अम्मा या फिर आया। मगर जब रमा उसे फिर से प्यार से सुला देती थी तो मैं पास बैठकर माँ बेटे को मुस्कुराकर ताकता रहता था और मुझे यूं लगता था जैसे हवाओं में उस साल का ये खूबसूरत सा खामोश सा गीत हल्के से गूंज रहा हो।

अच्छा भाई, आप तो जानते ही हैं कि 1960 के साल को मैंने गीतमाला की छाओं के लिए 3 वॉल्यूम्स में इसलिए ढाला था क्योंकि उस वर्ष बाप रे इतने ज्यादा लाजवाब गीत थे कि अगर उनका ठीक से जिक्र ना होता तो भाई बड़ी नाइंसाफी होती। अब देखिए ना, एक फिल्म उस साल आई थी जिसका नाम था परख, जिसका सिर्फ एक गीत सालाना संगीत सीढ़ी तक पहुंच पाया, मगर जो 3 और जबरदस्त गीत उस फिल्म में थे उनमें से एक बजा वॉल्यूम 13 में और 2 गीत अब बजेंगे, एक जरा कम और दूसरा काफी ज्यादा।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

एक और जबरदस्त म्यूजिकल फिल्म थी 1960 में, जिसके दो छांव वाले गीत मैं यहाँ बजाना चाहता था बहनों भाइयों, लेकिन उनमें से एक तो ऐसा धमाकेदार गीत है कि आज भी हर रेडियो स्टेशन पर साल में कई कई बार बजता है, खासकर बरसातें शुरू होते ही। जी हाँ, फिल्म बरसात की रात का गीत, गरजत बरसत सावन आयो रे। तो भाई वो तो बसा ही है आपके दिल में, और अब तो एक लाइन मैंने भी गा दी, इसलिए मैं वो गीत नहीं बजाऊंगा, उस फिल्म का एक और बड़ा मधुर मगर दर्द के सुरों में डूबा हुआ गीत बजाऊंगा जो आप शायद भूल गए होंगे। सुनिए दिल थाम कर।

लेकिन बहन और भाइयों, मैंने जो आज वादा किया है आपको समय के अलग अलग रास्तों के बारे में बताने का, उस वादे को देखिए मैं आज बड़ी ईमानदारी से निभा रहा हूँ। और आज समय का छठा रास्ता है, यही बहुरंगी बहुरूपी शब्द यानी आज। देखिए ना, आप

छोटा रास्ता है यही बहुरंगी बहुरूपी शब्द यानी आज। देखिए ना, आपके लिए तो आज इसलिए रह गया बहनों भाइयों कि उसमें इतने बरसों के बाद श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी पुराने रेडियो सिलोन का जिक्र था। जी हाँ, और उसमें ये लिखा था कि किस तरह आज भी कोई खास स्पॉन्सरशिप या एडवर्टाइजमेंट्स के बिना भी कैसे कुछ घंटों के लिए ही सही मगर बड़ी बाकायदगी से चल रहा है ये रेडियो स्टेशन जो कई वर्षों तक सारे एशिया में और अफ्रीका तक में भी धूम मचाता रहा था। और जो दो लड़कियां उसे आज भी बड़ी हिम्मत से चलाया जा रही हैं वो हैं पद्मिनी परेरा और ज्योति परमार। बनो भाइयों, उस अखबार के एडिटोरियल में और भी कई लोगों के नाम थे जिन सब की खबर मैं आपको किसी अगले वॉल्यूम में दूंगा, मगर उस लेख में खास तौर पर यह भी लिखा था कि रेडियो सिलोन का जो रेडियो प्रोग्राम लोकप्रियता की एकदम चोटी तक पहुंचा वो आपका यही प्रोग्राम था यानी गीतमाला। तो भाई, आपकी गीतमाला तो करोड़ों संगीत प्रेमियों का प्यार पाती रही करीब 45 वर्षों तक, मगर खुद गीतमाला ने भी तो अपने सभी प्रेमियों को यानी आप सबको अपना दिल देकर आपको अपने नैनों में बसाया था। ये देखिए, उसका सबूत दे रहा है 1960 की छाव ही का एक बड़ा प्यारा गीत जिसकी भाषा हिंदी नहीं थी बल्कि थी हिंदी से मिलती जुलती रंग रंगीली राजस्थानी।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में। बहनों और भाइयों, आजकल के जो नौजवान फिल्म फैंस हैं ना, उन्हें तो 50s और 60s की ज्यादातर फिल्मों में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती, जिसकी वजह एक ये भी है कि वो फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थीं। मगर साहब, उनके गीतों में वो मिठास, वो रोमांस, वो लगन और वो रंगीनी भी हुआ करती थी कि आज की हसीनाएं भी उन्हें सुनकर कहती हैं हाय, और आज के डैशिंग यंग मैन भी कहते हैं आई से हाउ क्यूट। तो भाई, 1960 का एक ऐसा ही क्यूट क्यूट गाना अब आ रहा है आपके सामने, हैं, आपसे नैन लड़ाने और आपको बाहों में भर दे।

अच्छा खैर, अब जरा प्यार से चलिए बहनों भाइयों, गीतमाला के समय के उस रास्ते पर जिस पर आया करते हैं गीतमाला की छाओ में सुनने वालों के खत। समय का ये रास्ता नंबर 7 वैसे हमारे इन वॉल्यूम में जरा कम आता है क्योंकि आजकल तो खत ढेर सारे आने लग गए हैं बहनों भाइयों और टाइम हमारे पास होता है बहुत कम। मगर एक बड़ा अनोखा खत डोंबिवली के रविंद्र त्रिंबक सिन्नरकर ने ऐसा भेजा है कि मुझे इसे शामिल करना ही पड़ेगा साहब। ये लिखते हैं, अमीन भाई मैं अपनी कार चलाते हुए एक रोज ठाणे जा रहा था, कार के सीडी प्लेयर डेक पर आपकी गीतमाला की छाओ में की एक सीडी लगी हुई थी। मैं सुनकर मजे ले रहा था और पुरानी यादों में खो रहा था कि अचानक ध्यान चूका और एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तो प्लीज अमीन भाई आप अनाउंस कीजिएगा कि गाड़ी चलाते हुए सीडी प्लेयर पर अच्छे अच्छे सीडीज कोई भी कभी भी ना सुने। अरे अरे अरे रविंद्र सिन्नरकर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? अजी पिछले 20-30 वर्षों से न जाने कितने करोड़ों लोग हर रोज गाड़ी चलाते हुए अच्छे अच्छे सीडीज या फिर एफएम रेडियो के मजेदार प्रोग्राम सुना करते हैं और इस वजह से तो आज तक किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो भाई बेहतर है कि आप जरा अपनी ड्राइविंग करते हुए बाबूजी धीरे चलना और आइंदा कार में गीतमाला की छाओ में सीडी लगाने से पहले परमात्मा को याद करके उससे दुआ मांगना कि वो आपके होश हमेशा हमेशा बिल्कुल ठिकाने पर रखे। चलिए एक मधुर भजन 1960 का अभी सुन लीजिए।

और बहनों और भाइयों, आप भी चाहे किसी भी धर्म किसी भी मजहब के हों, इस तेज रफ्तार जेट स्पीड के गड़बड़िए जमाने में अपने भगवान अल्लाह गॉड से नाता कभी मत तोड़िएगा, हाँ, वरना आपका भी वही हाल होगा जैसे 1960 की छाव में इनका हुआ था।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारम्भ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई भयो सधैँ भरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिंग
2: चीर परिचित यहाँ श्रेष्ठ टेलरिंग
3: FM अध्यात्म ज्योति 104.8।

दैत्य माता द्वारा बदले की कार्रवाई। पक्षी राज द्वारा काटा गया अंबकासुर का सिर तीव्र वेग से उसी के अपने भवन में गिरा। दैत्यराज की माता भ्रामरी उस समय सो रही थी। दासी ने उन्हें जगाकर कहा कि आपके पुत्र का कटा हुआ सिर यहाँ आकर पड़ा है। भ्रामरी ने सिर को उठाकर गोद में रख लिया और अनेक प्रकार के विलाप करती हुई रोने लगी। यस्य श्वेडित मात्रेण रोदसी कंपेत भृशम्। स कथम पतितः कुत्र निहतः केन वास्तुतः यम दृष्टवा कंपितः कालः स कथनम निधनम गतः। जिसके क्रोध मात्र से धरती आकाश कांपते थे और जिसे देखते ही काल भी थर थर कांपने लगता था। मेरे ऐसे वीर पुत्र को किसने कब किस प्रकार से मार डाला? उसको अत्यधिक व्याकुल देखकर दासी ने सांत्वना देने का बहुत प्रयत्न किया। अंत में वह बोली, अब इस प्रकार रोने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए अब इसका संस्कार करो और फिर विनायक के साथ प्रतिशोध लो। भ्रामरी को उनका परामर्श उचित प्रतीत हुआ और वह तुरंत उठती हुई बोली, सखी, तुम मेरे पुत्र के सिर को अभी तो तेल से सुरक्षित रखने की व्यवस्था करो। मैं काशी जाकर विनायक का सिर काट कर लाती हूँ, तब उनके सिर के साथ ही इनका भी दाह संस्कार कर दूंगी। अपने भवन से चलती हुई भ्रामरी ने सोचा कि वहां पहुंचकर विनायक को मारने में भी सफल किस प्रकार रहूंगी। तभी उसे कुछ उपाय सूझ पड़ा और देवमाता अदिति का रूप बनाकर काशी नगरी में पहुंची। राजभवन के द्वार पर उन्होंने कहलवाया, देवमाता अदिति आई हैं। महारानी ने सुना तो दौड़ी दौड़ी द्वार पर आई और देव माता के चरणों में प्रणाम कर भीतर लिवा ले गईं। उनका अनेक प्रकार से स्वागत सत्कार कर स्वर्ण सिंहासन पर बैठने का निवेदन किया। भ्रामरी अपने आंतरिक व्यथा छिपाए हुए ऊपर से प्रसन्नता का भाव बनाए हुए थी। उन्होंने पूछा, मेरा पुत्र महोत्कट विनायक कहाँ है? महारानी ने कहा कि बालकों के साथ कहीं खेलने चले गए होंगे, अभी बुलवाती हूँ। आदेश पाकर दासी उन्हें खोजने गई। इतने में ही देवमाता अदिति का आगमन हुआ सुनकर काशी नरेश वहाँ आ गए और चरणों में मस्तक रख प्रणाम करने के पश्चात बोले, साक्षात जगजननी देवमाता अदिति के यति का आगमन हुआ सुनकर काशी नरेश वहाँ आ गए और चरणों में मस्तक रख प्रणाम करने के पश्चात बोले, साक्षात जगजननी देवमाता अदिति के यहाँ पधारने से मेरा यह घर राज्य वंश एवं पित्र भी धन्य हो गए हैं। आपकी महिमा का गान करने में मैं अपने को असमर्थ पा रहा हूँ। जिस माता के देवराज इंद्र एवं विनायक जैसे महाप्राकर्मी पुत्र हों, वह तो स्वयं ही महान महिमामयी हैं। अपनी उद्विग्नता दबाते हुए माता अदिति रूपिणी भ्रामरी ने पूछा, राजन, मेरा पुत्र विनायक तुम्हारे यहाँ रहकर कुछ उत्पात तो नहीं कर बैठता, क्योंकि वह बड़ा चंचल है। महाराज ने निवेदन किया, नहीं मातेश्वरी, यहाँ रहते हुए उन्होंने उत्पात नहीं किया, उपकार ही किया है। इस राज्य पर समय समय पर आने वाली विपत्तियों को उन्होंने बात की बातों में ही दूर कर दिया। कुछ ही दिनों में अनेका अनेक दैत्यों को मार मार कर भगा दिया। अंधक, तुंग और अत्यंत क्रूर एवं महाबली अंबकासुर को भी उन्होंने मार डाला है। अंबक के मारने की बात सुनकर भ्रामरी के नेत्र लाल हो गए और वह क्रोध के कारण कांपने लगी। तभी उन्हें अपने अदिति रूप का ध्यान आया और अपनी स्थिति को संभालने की दृष्टि से अभिनय करती हुई बोली, उन दैत्यों को यह भी भय ना लगा कि मेरा महान शक्तिशाली पुत्र महोत्कट यहाँ विद्यमान है। अवश्य ही इन समस्त दैत्यों को दंडित करना होगा। मेरे पुत्र को यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए,
मैं उसके वियोग से भ्रांत चित हो रही हूँ और अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। काशीराज बोले, देवजननी, दैत्यों के आक्रमण के कारण युवराज के विवाह की तिथि हटानी पड़ी थी। अब शीघ्र ही उनका विवाह होने को है, इसलिए कृपा कर इस अवसर पर आप भी यहीं रहने का कष्ट करें। विवाह कार्य संपन्न होते ही मैं आप दोनों को स्वयं पहुंचा आऊंगा। दैत्य की माता भ्रामरी की मृत्यु। राजा यह कह ही रहे थे कि तभी भगवान विनायक आ पहुंचे। छद्म वेश धारिणी भ्रामरी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और फिर गोद में बैठाकर लाड़ लड़ाने लगी। उनकी चेष्टाओं से विनायक को कुछ अपूर्व सा लगा, फिर भी वे मुस्कुराते हुए चुपचाप बैठे रहे। भ्रामरी बोली, पुत्र, यह समय तो तेरे भोजन करने का है, खेलने में लगता है तो भूख का भी ध्यान नहीं रखता, ले यह मोदक खा ले। विनायक ने शीघ्रता से मोदक को खाते हुए अपने भूखे होने का प्रदर्शन किया, इसलिए उन्होंने उन्हें दूसरा मोदक दिया। उसे खाते समय विनायक को पता चल गया कि मोदक में तीव्र विष मिला है, अतएव उनकी गोद में बैठे हुए उन्होंने अपनी भार वृद्धि की। भ्रामरी को लगा कि वह दबी जा रही हैं। भार के कारण वह व्याकुल हो उठी, किंतु विनायक ने माता के प्रति अत्यंत स्नेह भाव का प्रदर्शन किया तथा उनसे और भी अधिक लिपट गए। उनकी जकड़ में फंसी हुई भ्रामरी का शरीर टूटने लगा, प्राण तड़पने लगे, उसके मुख से बरबस ही निकला, अरे यह क्या करता है, इस प्रकार तो मैं मर ही जाऊंगी। परंतु विनायक ने उन्हें छोड़ा नहीं, उन्हें उसकी छटपटाहट में ही आनंद आ रहा था। राक्षसी बेबस और पीड़ित थी, उसकी व्याकुलता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी। महाराज और महारानी ने उनका उत्पीड़न देखकर विनायक को हटाना चाहा और अंत में उन्हें खींचते हुए बोले, अदिति कुमार, आपके भार को सहने में यह असमर्थ है, इसलिए उठो, अपनी

माता की प्राण रक्षा का तो ध्यान रखो। किंतु विनायक उठे नहीं, उनकी जकड़ बढ़ती गई। भ्रामरी पीड़ा के कारण चित्कार कर उठी, उनकी आंखें फट गईं, जीभ बाहर निकल आई। लोगों ने देखा कि भ्रामरी का अदिति रूप अदृश्य होता जा रहा है और उनका स्थान ले रही है राक्षसी का भयंकर आकृति। कुछ देर में ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अब विनायक उठ खड़े हुए, सभी समझ गए कि माता अदिति का छद्म वेश बनाकर यह राक्षसी विनायक देव को मारने के लिए आई थी। इससे विनायक देव की अद्भुत सामर्थ्य और विलक्षण ज्ञान देखकर सभी आश्चर्यचकित हो उनकी स्तुति करने लगे। नमस्ते ब्रह्म रूपाय, नमस्ते रुद्र रूपिणे, मोक्ष हेतु नमस्तुभ्यम, नमो विघ्नहराय ते, नमो भक्त विनाशाय, नमो भक्त प्रियाय च, सर्वोत्पात विघाताय, नमो लीला स्वरूपिणे, सर्वांतर अंतर्यामिने तुभ्यम सर्वाध्यक्षाय ते नमः। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।

नौवां अध्याय भगवान विनायक का अभिनंदन पूजन। काशी नगरी पर आए दिन दैत्यों के आक्रमण होने और भगवान विनायक द्वारा उनका संहार किए जाने से समस्त प्रजाजनों, ऋषि मुनियों, राजपरिवारियों, विशिष्ट जनों आदि को यह विश्वास हो चला था कि अवश्य ही इन भगवान गजानन ने असुरों और दुष्ट कर्मियों को नष्ट करने के लिए अवतार धारण किया है। इसलिए सभी का यह विचार हुआ कि इनका यथाविधान अभिनंदन एवं पूजन किया जाए। अतएव एक दिन अनेक प्रजाजन सूर्य उदय से पूर्व ही राजभवन के द्वार पर जा पहुँचे। काशी नरेश ने उनका सत्कार करते हुए पूछा, आप लोगों ने किस लिए कष्ट किया है? जो कार्य हो निःसंकोच बताइए, क्योंकि प्रजा के कष्टों को सुनना और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना राजा का परम धर्म है। यदि कोई कष्ट ना हो तो भी जो मंतव्य हो उसे स्पष्ट कीजिए। प्रजाजनों ने विनम्र निवेदन किया, राजन, अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि कुछ दिनों से भगवान गजानन यहाँ विराजमान है, जिससे इस पुरी पर आने वाले समस्त संकट शीघ्र दूर हो जाते हैं। लगता है कि इनका आगमन काशी निवासियों की विपत्तियां दूर करने के लिए ही हुआ है, इसलिए उनकी पूजा का सामूहिक रूप से अवसर मिल सके तो यह हमारा परम सौभाग्य होगा। हमें आशा है कि यह प्रार्थना अवश्य स्वीकार कर ली।

आग्रह किया, भगवान तो किसी के ऐश्वर्य के भूखे नहीं, भावना के भूखे हैं। उन विद्रुमा ने भिक्षा में प्राप्त रूखे सूखे समस्त अन्न को एक साथ पीस कर पिष्ठी सी बनाकर पका डाली, तथा कुछ चावलों को पानी के साथ पकाकर पतला भात बना लिया। उन्हें शंका थी कि क्या भगवान विनायक उनका अस्वादु भोजन अंगीकार करेंगे, इसलिए यह बहुत चिंता आतुर थी। विनायक देव पधारे, विद्रुमा ने उठकर भावात्मक ढंग से उनकी स्तुति की, किंतु लज्जा के कारण भोजन नहीं परोसा। भगवान से भला क्या छिपा था। उन्होंने स्वयं कहा, माता लाओ, तुमने जो कुछ बनाया है वह खाने को दो। माता के संबोधन ने विद्रुमा को निहाल कर दिया। उसने ही पात्रों में रखी पिष्ठी और पतले भात को सामने ला रखा। विनायक भगवान ने उन्हें बड़े स्वाद से खाया और बोले, वह कैसा अद्भुत स्वाद था। इतना सुस्वादु भोजन तो मैंने आज तक नहीं किया माते। भोजन के पश्चात उन्होंने जल से हाथ धोकर कुल्ला किया और फिर बोले, निष्पाप विप्रवर, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव इच्छित वर मांग लो। शुक्ल शर्मा ने निवेदन किया, प्रभु आपने संपन्न लोगों के आग्रह की उपेक्षा करके मुझे रंक को दर्शन देकर कृतार्थ किया है, यह मेरा परम सौभाग्य ही है। हे नाथ, मैं आपकी अनन्य भक्ति मांगता हूँ, अतः कृपा कर वही मुझे प्रदान कीजिए। ऐसा ही हो कहकर भगवान विनायक देव ने वहां से प्रस्थान किया। शुक्ल दंपति ने उन्हें पहुंचाने के लिए बाहर तक साथ आने की चेष्टा की, तो वे उनकी द्रुत गति का साथ ना दे सके। उन्हें लगा कि भगवान विनायक देव अंतर्ध्यान हो गए हैं। उस दिन वे भगवान विनायक का ही स्मरण करते रहे। रात्रि में भूखे ही सो गए, किंतु प्रातःकाल उठे तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। उनका पुराना टूटा फूटा घर ना जाने कहाँ गया था। आंख खुलते ही उन्होंने स्वयं को एक अत्यंत वैभवशाली भवन में पाया। वे सोचने लगे कि हम कब कैसे यहाँ आ गए। तभी कुछ सेवकों ने आकर उनसे कहा, हम सब आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए क्या करें। शुक्ल शर्मा समझ गए कि यह सब भगवान विनायक देव की ही कृपा है, अन्यथा मेरी यह जीर्ण शीर्ण कुटी इंद्र भवन के समान कैसे हो जाती, तथा यह सेवक सेविकाएं कहां से आ जाते। उन सर्वज्ञ प्रभु ने प्रत्यक्ष में तो कुछ नहीं दिया, किंतु परोक्ष रूप में हमें अतुलनीय वैभव प्रदान कर दिया। धन्य हो प्रभु, आपकी कृपा का वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द भी तो नहीं है। आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। ऐसा कहते कहते शुक्ल दंपति भाव विभोर हो गए और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि ना रही। काशी नगरी पर नरांतक का आक्रमण। नरांतक महाप्राकर्मी तो था ही, कूटनीति में भी अत्यंत कुशल था। उसने शूर और चपल नामक दो गुप्तचर काशी में भेज रखे थे, जो केवल गुप्तचरी ही नहीं करते थे, भगवान विनायक देव को मार डालने के अवसर की भी ताक में रहते थे। वे वहां रहते हुए नागरिकों में पूर्ण रूप से घुल मिल गए थे, इसलिए उनके प्रति किसी प्रकार का संदेह भी नहीं होता था। एक दिन भगवान विनायक देव पालकी में बैठे हुए राजभवन की ओर जा रहे थे। उस समय पालकी उठाने वाले दो सेवकों के अतिरिक्त अन्य किसी को ना देखकर शूर और चपल ने परस्पर परामर्श किया कि भगवान विनायक देव को मारने के लिए यह अवसर अधिक उपयुक्त है, इसीलिए वे दोनों घोर गर्जन करते हुए पालकी पर टूट पड़े। सेवकों के हाथ से पालकी के हत्थे छूट गए और पालकी धरती पर जा गिरी। सेवक भय से कांपते सिकुड़ते एक और खड़े हो गए। उन्होंने समझ लिया कि आज प्राणों के कुशल नहीं है, किंतु भगवान विनायक देव
पहले से

ही सावधान थे। उन्होंने पालकी से उठकर दोनों को हाथों से पकड़ लिया और चक्र के समान घुमाने लगे। राक्षसों को उनके बल का क्या पता था। यदि उन्हें अपने पराभव की कल्पना होती तो वे ऐसा कदापि ना करते, परंतु अब तो उन्हें अपने ही प्राणों पर संकट दिखाई देने लगा, इसलिए त्राही माम की पुकार करने लगे। भगवान विनायक देव ने उनकी याचना सुनी तो दयाद्र हो उठे, उन्हें अपनी पकड़ से छुड़ाते हुए बोले, तुम कौन हो, अपना यथार्थ परिचय दो, अन्यथा प्राण दान नहीं मिलेगा। उन दोनों ने कहा, प्रभु हम नरांतक के गुप्तचर हैं, हमें आपको मार डालने के लिए ही यहाँ रखा गया था, अब हम यहाँ, अपना यथार्थ परिचय दो, अन्यथा प्राण दान नहीं मिलेगा। उन दोनों ने कहा, प्रभु हम नरांतक के गुप्तचर हैं, हमें आपको मार डालने के लिए ही यहाँ रखा गया था, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, इसीलिए हमें मारिए मत। प्रजागणों के कहने पर भी उन्होंने राक्षसों को नहीं मारा, बोले मैं तुम्हें अभय दे चुका हूँ, इसलिए मारूंगा नहीं, हाँ तुरंत ही नगरी छोड़कर तुम्हें चले जाना होगा। वे दोनों तुरंत ही चल दिए। नरांतक की सभा में जाकर उन्होंने अभिवादन किया और फिर विनायक भगवान पर अपने आक्रमण की विफलता का समाचार यथावत सुना दिया और अंत में बोले, महाराज उस ऋषि कुमार को कोई जीत नहीं सकता, इसलिए उनसे शत्रुता त्याग देने में ही भलाई है, परंतु नरांतक को तो अपने बल का गर्व था। उन्होंने गुप्तचरों की बात नहीं मानी और बोले, सेनापति चतुरंगिणी सेना लेकर काशी पर आक्रमण कर दो, मैं स्वयं ही तुम्हारे साथ चलूंगा, फिर देखता हूँ कि वह कैसे अपने प्राण बचाता है। आदेश मिलते ही तैयारी हो गई, दैत्यों और वीरों में रणोन्माद छा गया, दिगंत व्यापी युद्ध वाद्य बजने लगे। जब गजाश्वारूढ़ सेनापतियों महारथियों पदातियों की विशाल सेना एकत्र हो गई, तब प्रस्थान का डंका बज उठा। समूची रणवाहिनी काशी की ओर द्रुत गति से चल दी।

0: खेलौन नपर्ने जर्मन प्रविधिबाट बनेको उत्कृष्ट उत्पादन ऊर्जा दाल र चामल। ऊर्जा दाल चामल स्वादले खाइन्छ, सधैँ स्वस्थ भइन्छ।
1: एफएम अध्यात्म ज्योतिका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू प्रायोजन गर्न अथवा यहाँको सेवा वा उत्पादनको विज्ञापन गर्न चाहनुहुने महानुभावहरूले मोबाइल नम्बर 9841289820 मोबाइल नम्बर 9841289820 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
2: काशीराज को दूत के द्वारा दैत्य सेना की चढ़ाई का समाचार मिला। वे उस समय भोजन करने बैठे ही थे कि शत्रु के आक्रमण की बात सुनकर अन्न का स्पर्श मात्र करके तुरंत उठ खड़े हुए और प्रधान सेना अध्यक्ष को बुलाकर बोले, तुरंत सेना को राज्य सीमा पर भेजो, जिससे कि बढ़ता ही चला ना आवे, मैं भी शीघ्र ही आ रहा हूँ। महाराज ने तुरंत ही वीर वेश धारण किया और फिर आज्ञा लेने के लिए भगवान विनायक के पास पहुँचे। भगवान विनायक ने कहा, राजन, वीरता पूर्वक शत्रु का सामना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय विनायक कहते हुए काशीराज अश्व पर सवार होकर रण क्षेत्र की ओर बढ़े। उनकी सेना भी तैयार होकर वेगपूर्वक आगे बढ़ी। तभी गुप्तचर ने समाचार दिया, महाराज, दैत्य सेना असंख्य है, वह समुद्र के समान अत्यंत वेग से उमड़ती आ रही है। अपने सीमित साधनों और अल्प सैनिकों के द्वारा उनका सामना करना किसी प्रकार संभव नहीं है। वही स्थिति है महाराज, जो भगवान सूर्य के सामने खगोतों की होती है, इसीलिए राक्षसों से संधि कर लेने में ही भलाई है। काशी नरेश को चिंता। महाराज ने अपने अमात्यों से परामर्श किया तो एक वृद्ध अनुभवी अमात्य बोले, राजन, स्थिति बहुत ही शोचनीय है। वे लोग टिड्डी दलों के समान बढ़ते चले आ रहे हैं तो हम सब काल के गाल में समा जाएंगे और हमारा राज्य शत्रुओं की विलास भूमि बन जाएगा। काशीराज द्वारा उपाय

स्थिति बहुत ही शोचनीय है। वे लोग टिड्डी दलों के समान बढ़ते चले आ रहे हैं, तो हम सब काल के गाल में समा जाएंगे और हमारा राज्य शत्रुओं की विलास भूमि बन जाएगा। काशीराज अनुचित नहीं होगा। अन्य सभी अमात्यों, सेना अध्यक्षों आदि ने वृद्ध अमात्य की उक्त बात का ही अनुमोदन किया तथा सभी कहने लगे, महाराज जैसे भी दैत्यराज प्रसन्न हो सके वह कार्य तुरंत कीजिए। अभी यह विचार चल ही रहा था कि काशीराज की सेना का घेरा तोड़कर दैत्य सेना ने तीव्रतम आक्रमण कर दिया। उन्होंने कहीं आग लगाई, कहीं लूटमार की और कहीं स्त्रियों का अपहरण आरंभ कर दिया। सर्वत्र विपत्ति ही दृष्टिगोचर हो रही थी। चित्कार के कारण आकाश भी गुंजायमान हो गया। अनेक महिलाओं का सतीत्व नष्ट किया गया और अनेक महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आत्मघात करने लगी। दैत्य सेना की विजय। महाराज को अपनी प्रजा की दुर्दशा देखकर बड़ा दुख हुआ और वे अपने अमात्यों और सेनापतियों को संबोधित करते हुए तीव्र स्वर में बोले, वीरों अब संधि का समय नहीं है। जब तक हम जीवित हैं तब तक शत्रु को आगे बढ़ने और उत्पात मचाने से रोकना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। अतएव शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ो और अपने प्राणों की बाजी लगा दो। कायर बनकर मरने से तो युद्ध में प्राण देकर मरना ही श्रेयस्कर है। महाराज का इतना कहना था कि उनकी सेना तेजी से आगे बढ़कर शत्रु के समक्ष जा टिकी। उसने दैत्य सेना का आगे बढ़ना रोक दिया। कुशल सेनापतियों ने डटकर लोहा लिया कि असुर दल गाजर मूली के समान कट कट कर गिरने लगे। कुछ सेना नगर रक्षा के कार्य में जुट गई। उन्होंने नगर में घुसे हुए दैत्यों को पकड़कर मार डाला। नौरांतक को यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि काशीराज की अल्प सेना ने उसकी अत्यंत विशाल सेना को काट डाला। अब दैत्य सेना हथियार फेंक फेंक कर भाग रही थी। बहुत रोकने पर भी कोई रुका नहीं था, परंतु काशीराज के सैनिक विजय गर्व में इतने गर्वित हो गए कि उन्हें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रहा। काशीराज स्वयं भी यह भूल गए कि दैत्य गण बहुत छली प्रपंची होते हैं, वे हार कर भी पुनः आक्रमण कर सकते हैं। और हुआ भी यही। दैत्य सेना का शिविर पीछे हटाकर लगा दिया गया था और काशीराज एवं उनकी सेना की प्रत्येक गतिविधि पर दृष्टि रखी जा रही थी। अवसर पाते ही सैकड़ों दैत्य उनके व्यूह में घुसे और काशीराज को पकड़कर ले गए। उनके साथ दो अमात्य पुत्र भी थे जो बंदी बना लिए गए। अब नरांतक बहुत प्रसन्न था। उसने काशी में प्रवेश करने का विचार कर काशी नरेश और अमात्य पुत्रों को बंदी वेश में आगे आगे पैदल चलाया और पीछे पीछे अपनी पुनर्गठित विशाल सेना को चलने का आदेश दिया। विजय मद में झूमती हुई सेना काशी में प्रविष्ट हो गई। उसके अत्याचारों से नगरवासियों के हृदय कांप उठे। लूटमार, अपहरण, सतीत्व नाश, अग्निदाह आदि का तांडव आरंभ हो गया। यह देखकर काशीराज के तरुण सैनिकों में ग्लानि उत्पन्न हुई और युद्ध के लिए कटिबद्ध हो गए। दैत्य सेना राजभवन के समीप पहुंची तो महारानी का हृदय कांप उठा। वे रोने लगी क्योंकि दैत्यों से धन वैभव तो क्या, लाज बचाना भी संभव नहीं था। महाराज के बंदी होने के समाचार ने तो उन पर विपत्ति का पहाड़ ही डाल दिया था। महारानी का करुण विलाप भगवान विनायक के कानों में पड़ा तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने घोर गर्जन कर सिद्धि का स्मरण किया। वह तुरंत ही उपस्थित होकर बोली, क्या आदेश है देव? उन्होंने कहा, दैत्य बड़े चले आ रहे हैं और तुम आदेश पूछती हो? अपने कर्तव्य का स्वयं निश्चय करो। माँ सिद्धि ने उनका मंतव्य समझ लिया। उनके संकेत मात्र पर अत्यंत भयानक मुख, हल जैसे दांत, सर्प जैसी जिह्वा
कुठार जैसे नख और पर्वत शिखर जैसे मस्तक वाले असंख्य आयुधधारी सैनिक प्रकट हो गए। उन्होंने विनायक देव के समक्ष आकर मस्तक झुकाया और विनीत स्वर में निवेदन किया, परमेश्वर हमें बड़ी भूख लगी है और

0: अन्न प्रदान कीजिए और कार्य बताइए। भगवान विनायक बोले, तुम समस्त दैत्य सेना को खा जाओ और फिर नरांतक का मस्तक काट कर मेरे समक्ष उपस्थित करो। जो आज्ञा कहते हुए वे वीर गर्जन करते हुए दैत्य सेना की ओर बढ़ चले। उन्होंने तुरंत ही राक्षसों को काटना और उदरस्थ करना आरंभ कर दिया। उनके सामने राक्षसी सेना की कर्तव्य विमूढ़ हुई प्राण विहीन होने लगी। किसी को कहीं भागने का अवसर नहीं था। अपने असंख्य सैनिकों और वाहनों को इस प्रकार बात की बात में विनाश हुआ देखकर नरांतक व्याकुल हो उठा और दिव्य वीरों पर भयंकर बाण वर्षा करने लगा, किंतु उसके सभी प्रयत्न निष्फल थे। इसी समय दिव्य वीरों के प्रधान ने नरांतक को पकड़ लिया और उससे कहा, दुष्ट, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। चाहूं तो अभी तेरा मस्तक पृथक कर दूं, किंतु एक अवसर देने के लिए तुझे विनायक भगवान की सेवा में ले लिए चलता हूं। अब भी गर्व छोड़कर उनकी चरण शरण को प्राप्त कर ले तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं। ये कहकर उन्होंने नरांतक को विनायक के सामने उपस्थित किया और चरणों में प्रणाम करता हुआ बोला, प्रभु, आपके आदेशा अनुसार इस दैत्य की समस्त सेना को उदरस्थ कर लिया गया। यह राक्षस आपकी सेवा में उपस्थित है, इसे मोक्ष प्राप्त करावे और मुझे सोने के लिए कोई उपयुक्त स्थान प्रदान करें। भगवान विनायक बोले, तुम मेरे मुख में घुसकर जहां चाहो वहां विश्राम करो। यह कहकर अपना मुख खोल दिया, तभी वह दिव्य पुरुष उनके मुख में प्रविष्ट होकर विलीन हो गया। काशीराज ने भगवान विनायक के चरण पकड़ लिए और भाव विभोर होकर स्तुति करने लगा। त्वमेव ब्रह्मा विष्णुश्च महिषो भानुरेव च, त्वमेव पृथ्वी वायुरंतरिक्षम दिशो द्रुमः, पर्वते ही सहितः सिद्धा गंधर्व यक्ष राक्षसः। हे नाथ, आप ही ब्रह्मा विष्णु शिव एवं सूर्य हैं। पृथ्वी वायु अंतरिक्ष दिशा वृक्षों सहित पर्वत सिद्ध गंधर्व यक्ष और राक्षस सभी कुछ आप हैं। यह समस्त जड़ चेतन समुदाय आपका ही रूप है। प्रभु, आप सर्वसमर्थ सर्वाधार सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञ हैं।
1: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

तद उपरांत काशीराज ने भगवान विनायक देव का षोडशो उपचार पूजन किया और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। सर्वत्र विजय उल्लास में उत्सव मनाए गए। घर घर में मंगलाचार होने लगा। जिधर देखो भगवान विनायक की जय का घोष सुनाई देता था। नरांतक का संहार। नरांतक को भगवान विनायक देव की आज्ञा से राजभवन में ही बंदी अवस्था में रखा गया था। उसके साथ सम्मान का व्यवहार किया गया तथा भोजन शयन आदि की भी ठीक व्यवस्था रखी गई। लोगों ने कहा, इस दुष्ट को तड़पा तड़पा कर भूखा मार देना चाहिए, क्योंकि अत्याचारियों को दंड दिया ही जाना चाहिए। भगवान विनायक ने कहा, इस प्रकार शत्रु का वध करना कायरता होगी। हमारा कर्तव्य है कि बंदी अवस्था में भी उसे कोई कष्ट ना होने दे। इस प्रकार भगवान विनायक की आज्ञा का पालन किया गया। नरांतक समझ गया कि यह बालक कोई ईश्वर भक्त तो है ही, जिसने दिव्य सेना उत्पन्न करके उसके द्वारा समस्त दैत्य सेना का भक्षण करा दिया। यदि यह चाहे तो सभी कुछ कर सकता है, परंतु मुझे इसके साथ युद्ध तो करना ही चाहिए। यदि इसके हाथ से मारा गया तो मोक्ष मिलेगा, अथवा यह मुझसे हार गया तो फिर मैं समस्त मनुष्य लोक का स्वामी रहूंगा ही। उसने भगवान विनायक देव से मिलने की इच्छा प्रकट की तो वे उसके समक्ष पहुंच गए। उन्हें देखते ही दैत्यराज बोला, अरे बालक, तूने तो बड़ा इंद्रजाल दिखाया, किंतु तू जानता नहीं कि हम दैत्यगण स्वभाव से ही इंद्रजालिक होते हैं। अकेले मेरे से ही समस्त ब्रह्मांड कंपायमान रहते हैं। मेरे भ्रू विक्षेप मात्र से वायु चलती है, वर्षा होती है और काल की गति नियंत्रण में रहती है। सूर्य चंद्रमा भी मेरी आज्ञा के बिना गति नहीं कर सकते, तब तू मेरा क्या अनिष्ट कर सकता है। भगवान विनायक देव बोले, अभी तेरा गर्व नष्ट नहीं हुआ है। अरे मूढ़, तू अपनी सेना को नष्ट हुई देखकर स्वयं देख चुका है, फिर भी तेरे नेत्र नहीं खुले। उस समय तेरा प्राकर्म कहाँ गया था जब तू पकड़कर यहाँ लाया गया था। नरांतक ने कहा, मेरे प्राकर्म को चुनौती देता है मूर्ख, मैं तुझे अभी नष्ट किए देता हूँ। यह कहकर वह सहसा उठा और भगवान विनायक पर झपट पड़ा। तभी काशी नरेश ने उसे ललकारा, निर्लज, अभी भी तेरा अहंकार मरा नहीं। जेवरी चली गई किंतु बल नहीं गया। अरे मूर्ख, तू निरर्थक अपने प्राण क्यों खोना चाहता है। नरांतक क्रोधित होकर बोला, अरे कायर, इस बालक की ओट लेकर वीर बनना चाहता है, परंतु तेरे जैसे नरों को मारने में समर्थ होने के कारण ही मेरा नाम नरांतक हुआ है। काशीराज बोले, देव प्राप्त वर और पुण्य तभी तक कार्य करते हैं जिनका भोग अथवा अवधि समाप्त नहीं हो जाती। तेरे नर की अवधि और पुण्य दोनों ही समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि तू साक्षात भगवान विनायक के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करता हुआ उनसे व्यर्थ ही शत्रुता मोल ले रहा है। बस इतना सुनते ही दैत्यराज अत्यंत उग्र हो उठा। उसने झपट कर काशीराज का धनुष छीना और उसके दो टुकड़े करके फेंक दिए। फिर उन्हें धक्का देकर उनके वक्षस्थल पर चढ़ बैठा और मारने का प्रयत्न करने लगा। विनायक देव ने काशी नरेश को इस प्रकार की दुर्दशा ग्रस्त देखा तो नरांतक के विशाल मस्तक पर परशु प्रहार किया, जिससे वह दैत्य कुछ समय के लिए मूर्छित हो गया, किंतु चेतना लौटने पर उठकर घोर युद्ध करने लगा। उसने दौड़कर बड़े बड़े वृक्ष उखाड़कर विनायक पर फेंके, पर यह देखकर उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ कि उसके द्वारा फेंके जाने वाले सभी वृक्ष भगवान विनायक के परशु की धार का स्पर्श पाते ही चूर्ण विचूर्ण हो जाते थे। अब उसने आसुरी माया फैलाई और विविध रूप धारण कर प्रकट होने लगा।
भगवान विनायक ने उसकी माया को नष्ट कर दोनों हाथ काट डाले, किंतु वर प्राप्ति के कारण उसके नवीन हाथ उत्पन्न हो गए। अब भगवान विनायक ने उसका मस्तक काट दिया, किंतु वह भी नया उत्पन्न हो गया। इस प्रकार उसके साथ और मस्तक बार बार काटने पर भी नवीन उत्पन्न हो जाते। इस प्रकार वह दैत्य किसी भी प्रकार वश में नहीं आ रहा था। यह देखकर भगवान विनायक देव ने तीक्ष्ण बाणों की मार से उसके दोनों पांव काट दिए। वे पांव तुरंत ही आकाश मार्ग में उड़ते हुए स्वर्ग में देवांतक के समीप आ गिरे। इधर उसके पांव भी नवीन निकल आए। उन्होंने उसका मस्तक पुनः काटा, जो कि उसके पिता रुद्रदेव के सम्मुख जाकर गिरा। दैत्यराज को नवीन मस्तक की पुनः प्राप्ति हो गई। यह देखकर विनायक देव ने सोचा कि अब इसे अन्य उपाय से वश में करना होगा। उन्होंने तुरंत ही मोहनास्त्र का प्रयोग किया, जिससे दैत्यराज इतना मोहित हो गया कि उसे दिन रात्रि का भी ध्यान नहीं रहता। वह यह भी नहीं समझ पा रहा था कि मैं जिस बालक से युद्ध कर रहा हूँ वह स्त्री या पुरुष अथवा मनुष्य है या पशु। तभी उसे ध्यान आया, जब भगवान शंकर ने वर प्रदान किया था तब अंत में यही कहा था कि तेरी मृत्यु तभी होगी जब मति भ्रम उत्पन्न हो जाएगी। उसने सोचा, तो क्या मेरा मरण काल उपस्थित है? वस्तुतः वह उसका मरण काल ही था। भगवान विनायक ने विराट रूप धारण कर लिया और नरांतक को हाथों में उठाकर पुष्प के समान मसल डाला। इस प्रकार दैत्यराज का अस्थि पंजर बिखर गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पिता रुद्रदेव का शोकित होना। काशीराज प्रसन्न हो गए, सर्वत्र हर्षोल्लास छा गया। विनायक भगवान की जय का घोष गूंज उठा। सभी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और इनका विधिवत पूजन कर महाराज ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान की। इस प्रकार नरांतक के मरने से धरती का आधा बोझ उतर गया। उधर विप्रवर रुद्र केतु और उनकी साध्वी पत्नी शारदा ने अपने प्रतापी पुत्र का कटा हुआ मस्तक देखा तो अत्यंत ही व्याकुल हो उठे। आरंभ में तो उन्हें अपने पुत्रों का आचरण अच्छा नहीं लगा, किंतु त्रैलोक्य विजय कर लेने और सर्वत्र आधिपत्य स्थापित कर लेने के कारण उनकी अप्रसन्नता दूर हो चुकी थी। रुद्रकेतु और शारदा दोनों ही नरांतक के लिए विलाप करने लगे। फिर वे देवांतक के पास स्वर्ग में पहुंचे, जहां देवांतक भी अपने अनुज के दोनों कटे हुए पांव देखकर चिंता आतुर हो गया। उसने गुप्तचर भेजकर पता लगाया तो मृत्यु का विश्वास होने पर वह भी रोने लगा। तभी उनके अमात्यों ने कहा, महाराज, युद्ध क्षेत्र में हार या जीत तो होती ही है। शत्रु के प्राण लेना या उनके हाथों स्वयं मर जाना सामान्य बात है। फिर पृथ्वी पर तो आयु भी 100 वर्ष की ही मानी जाती है। इसलिए अब ना मरते तो शतायुष्य होने पर तो मृत्यु आ ही सकती थी। इसलिए अपने भाई की मृत्यु का शोक ना करके शत्रु से प्रतिशोध करना चाहिए। देवांतक को भी प्रतिशोध की बात समझ में आई और उसने अपने माता पिता से कहा, जो कुछ हो गया वह तो अब मिट नहीं सकता, इसीलिए शोक को त्यागिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि शत्रु का वध करने के लिए स्वयं जाऊं। आप विश्वास कीजिए कि मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। मेरी भ्रकुटी की वक्रता देखकर त्रिलोकी कांप उठती है। तब वह बेचारा अल्प बल काशीराज उस बालक की रक्षा कैसे कर पाएगा। यह कहकर उसने घोर गर्जना की और अमात्यों एवं सेनापतियों को बुलाकर सेना तैयार करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में विशाल दैत्य सेना प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गई। कूच का डंगा बज उठा और दैत्यों की हलचल से ब्रह्मांड कांपने लगा। बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।